एतन होती खाक में माणी गौर करे, एतन होती खाक निमाणी गौर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया। जे जाना मर जाइए कुम न आइए, झूठी

लेखना कबीरा तुरत केल के पुड़िया बांधी दे दिल से चार को देखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए बल।

फूटे कर जो पानी छिन छिन और बेहात है, फूटे कर जो पानी सोदन आवन लागा, सोदन आवन लागा।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कैस कबीर सुनोरे प्राणी कैस कबीर सुनोरे प्राणी छोड़ो।

गोड़िया पे ही करना चुगला पे ही तेधारी है। देखे किता अपना दर के चिपकी सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई मारी है। जिसके री प्राण है तो सा

मैं ठीक हो जाऊंगा। मां रो पई, आंसू पर आए, आखन लगी बेटा जिस रब दी तू गल करने उस रब दे बच्चे उस दे जीव जंतु को के मैं आप भी खादे हन ते तेनू भी खुआए। बच्चिया हुण मैं अरदास करन जोगी रही नहीं, की मुंह लैके अरदास करा, मेरे पाप अगे आउंदे हन, मैनू अरदास नहीं करन दे ते ना ही मैथों अरदास हो सकदी। पातशाह आखदे भगत आखदे वेख कितने वड़े वड़े पापी तर गए ते पातशाह दे चरणा विच कर अरदास, तू भी जरूर तरेंगा पर किवें, जिवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब सानू सिखांदे हन कि इंज मुखातब होके रब नू अरदास कर, ते जे अजामल तर सकदे गनका तर सकदी है ते तेरी भी जरूर अरदास सुनी जाएगी। आओ आपा मिलके करिए अरदास, पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी सानू सिखाउंदे हन, ऐ गुरु के सिख इंज बेनती कर।

दगड़ी धिम धी दांग दगड़ी देम दिरना दगड़ी धर्म धी दांग दगड़ी देम दिरना दगड़ी धर्म धी दांग दगड़ी देम दिरना ਤਾਕੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਤਾਂ ਤਾਕੜ ਦੀ ਦੇਮ ਦਿਰਨਾ ਤਕੜ ਦਾ।

और सत्संग जीओ। जो बच्ची का जन्मदिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उसनु उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे,

ग्रंथ दे अंदर किसे संत गुरु की बाणी अवतार दी बाणी दे विच ए नहीं लिखिया भाई संसार दी खोज करो संसार चो ए कुछ मिलेगा। संसार परतख है, जाहिर है, ते जाहिर चीज जड़ी है नजर आ रही है। संसार ते नजर आ रहे हैं ना, केड़ी केड़ी चीज इस दे विच मिल सकती, प्राप्त हो सकती है। पर एक रब दा दर है, प्रभु दा दर है, जेड़ा नजर नहीं आउंदा ते उस तक पहुंचना है। भाई गुरदास साहब ने बड़ा सुंदर हवाला दिता अपनी पावन कवित बाणी दे अंदर लिखदे ने,

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नर्क कहीं न लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसल तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

गुरु दे शब्द दी विचार दी असिस्टेंस दे नाल गाइडेंस दे नाल इस देही नू काढ़न, इस नू सही शेप च लिया, इस नू सही कंडीशन च लिया। सो उपदेश नंबर एक, एक देही दे लेवल ते वर्क करना है कि इस देही नू सोधना है।

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करदी है। तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करदे जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहिंदे ने इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वस्त नहीं। साढ़े जड़े ख्याल हैं वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जाता है, कोई किधर नू लै जाता है, कोई किधर नू लै जाता है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, बाणी इस तरह आख्या

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर, जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसे उन्हें देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वॉच देम, सिर्फ उन्हां नूं देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नूं देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है। अपने विचार अस्वारी कीजे, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नूं देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वद्दा है, अगां वद्दा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स बाय गैप, अते उस गैप दे विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग है। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

से पाँव जल तर गया, जिने तो है ध्यायो तिने पूर्ण प्रताप पायो, जो सेवे सत मुरार से पाँव जल।

कूड पर जा कूड़ सर संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ पा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पा।

खत्री शब्द शुभ शब्द शुद्ध शब्द का करत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानक का दास है सोई नंदन दियो महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा।

पंक्ति दे अंदर जरा सोचो कि सतगुरु ने की भेद रखिया। एक बेबल होई होई जीव रूप स्त्री सतगुरु दे चरणा च अरदास करदी है,

दूसरा शब्द शरण गुरु जी भरत नारदन पदार्थ वर्षा पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तीन हस्ते है।

0: जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सोमर से गुरु मन भाव
1: जनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुना
1: तिस गुर सिख गुर

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? इसकी बहुत सी कारें हैं, इसकी बहुत फैक्ट्री है, इसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

फिर की खुली ताकि फिर खुली सतगुरु कहन लगे आ गए मैनु यकीन सी कि तू आवेगा अज कुछ भाव घटाया कि नहीं कीमत घट की है कि नहीं आखन लगा मालक धन गुरु गोबिंद सिंह सत्य पातशाह कीमत कल वाली रखी है लेकिन एक रैत रख दिती है केड़ी महबूबा दे कूचे अंदर मैं दिल में चढ़ जर था नंदलाल कहन लगे अपनी विथिया।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे तह जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता के आखन लगा, तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हाँ। नंद लाल ते सुन ले तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे होंगे ने कि छेज ते चढ़ जाते। ओ बाबा मैनू हाले ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिले अपने गुरु गोविंद सिंह जी की छेज ते बैठ मा। नंद लाल आगरा ते बेहद पदार्थ सन तेरे खाण पीण वास्ते, इत्थे की मिलता है, इत्थे की मिलता है। ते नंद लाल ने

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोट महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले। तो अगली पंक्ति जरूर फरमाते हैं, कारी स्नान सिमर प्रभु अपना।

चले ले मरदाने तू साडे बस्तर फड़ असी वेई नदी विच इश्नान कर मरदाने ने बस्तर पकड़े हजूर वेई नदी विच प्रवेश करदे हन चुभी मारदे हन तर पैरी सा संगत बाहर नहीं निकले आखो सी बाबे ने ऐसी चुभी मारी मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रे पातशाह हुण बाहर आउंदे हन हुण पानी विचों बाहर निकलदे पर हजूर निकले मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा है बाबा किधर गए हो कदे इधर भज्जा दिन चढ़ गया अजे भी बाबा बाहर गया कैरी सात संगत बेबे नानकी नू जाके लोका ने कहा धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा बेबे तेरे वीर ने वेई नदी भी चुभी मारी है बाहर नहीं आया प्रेमी तो अखा चो पानी बहा रहे जिन्हां दे अंदर गुरु नानक का प्यार सी उन्हां दे अखां चो तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं पर जो लोग नुक्ताचीन सन नास्तिक सन उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गया आखो सी दौलत खान वाली हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का मोदी खाना गरीबां नूं लुटा दिता है इस भाईए जराम नूं भी बड़ी उदासी पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नूं मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इस नूं किसे कम लाओ मोदी खाना लै दिता पर अज पता नहीं की होया बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता ओ तां डूबिया नूं उतारन वास्ते आया किसे महापुरश ने लिखे चंद्रमा दी मिसाल दित्ती है गुरु दी भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा तो लिखे कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना चन्नो सौ गुणा वध लिशकार दाए चढ़े चंद ता डोबदा तारियां नू तो ता डुबिया होया नू चंद्रमा चढ़ जाए तारियां दी लो मधम पै जांदी फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है दे मत्थे ते कालक लगी स्याही अपनी चन्न तो नहीं लेंदी तू लखां दी स्याही उतारदा है फिर उच्चा वसना है अर्श दे किंगरे ते ऐपर नीवियां ते चाती मार तो प्यारी सत्संग सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा आखिरकार हजूर वेई नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे सचखंड पहुंचे अगे नूर ही नूर है सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया लखाई मोहम्मद लखाई रामचंद लखाई कृष्ण लखाई गोरख लखाई देवी देवते खड़ोते तो साहबाने थे शब्द उच्चारण कीते है जित दर लख मोहम्मदा लख ब्रह्मा विष्णु महेश लख लख राम वडीरियां लख राही लख ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर तो दर्ज नहीं है
ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼

रसना खाली ना रवे। सचखंड विचों ए नाम जो अज धन गुरु नानक पातशाह जी नू बख्शिश हो रही है, वो केड़ा नाम सी

फकीर लक्षण आशा जी की वारदा लगा के कीर्तन की समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आज दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हां तो जो तुसी प्यार दिता है पर ए भी गुरु दी प्रेरणा सी तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो ये बेनती की थी कि कई प्रेमी कहने लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की थी सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी सात संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार दे कीर्तन का भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपां आसा राग विच लगाऊंगे।

कान्हा राग तो बाद कल्याण राग दा आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा औ कांधरा कल्याणा दी तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करता है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक करती है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा दिता कि माया दे सारे जतन किसी काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते सुतंत्र राग हन। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हन अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगदे हन। इसका बाजी सुर गंधार अते समाधी निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावह गे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद धुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावह गे।

कहीं कमाए। सहसे जियो मनी रहे कित संजम तोता जाए, कित संजम तोता जाए।

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन सुख सद होई, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जिस लेखस में पाए, हुरमत स्नोगली वब जो भी दुना खाए, खसमे करे बराबरी फिर गैरत नर पाए, जो गवाए गला मोहिम पाना खाए, जिस दा दिता

जिनका कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, तिस प्रभ को आठ पहर ध्याई। रमैया रेन साध जन पावो, गुरमिल अपना खसम ध्यावो। जिन कीता मूढ़ ते बक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निध पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाई।